0: 91 MHz Divi FM. Abadues emmegat.
1: Copy. Ding. Aslo. Ya habibi ya qayubina ki nawarste kanwati hatar wana har release kuri filmu Nagma fi hayati nuwata a melody in my life kahimana fawalave me film ki Mr. Lupnan ke musical romance film me film ki legendary lavakunteria Farid El Atrasha Mervat Amin lead role un fenigendia film adi hama ehme me lava kiya fawaniwes Farid El Atrash enai Syria Mr. ge lavakunterie ओडिस्टे कंपोजर आदि एक्टरे सीरिया यंग उफ़ा विनामवेस उम्रों नुवा हरुका मम्मया एपड़े पफाकुदे नायकु मिस्रंग हिचुरा कुरीरु एना वेकें गोस्फावनी विहवना कारुनुका अरबी म्यूजिक के एमे फाहा का कोल्देवे एफ़राता

0: ನವ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಕಿಯಾಫವನಿ ನವಾರ್ಸ್ತೇಕೆ ಹದ್ದಿ ಹಣುವವನ ಆಹರು ನುಸ್ರತ್ ಫಾತಿಹಾಲಿ ಖಾನ್ ಫುರತಮ ಫಹರಂ ಇಂಡಿಯಾ ಕುರಿ ದತುರುಗ ಮಿ ದತುರಕಿ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ಗೆ ದೌವತಕ ರಿಷಿ ಕಪೂರ ನೀತು ಸಿಂಗ್ಗೆ ಕ್ಯಾವೆನಿಗೆ ಹಫ್ಲಾಗ ಬ್ಯಾವಿರ್ವುಮ ಕುರಿ ದತುರೆ ಎಮ್ಮೆ ಫುರತಮ ಮಿ ಲವ ಕಿಯಾಫವನಿ ಮಿ ಹಫ್ಲಾಗ ಲವೈಕವುರ ಬೊಡ ಮಿ ಕವಾಲಿಯೇ
1: समझते हैं कि इस गाने को मीराबाई ने लिखा है शायद इसलिए क्योंकि इस गाने का जो टोन है वो एक भक्ति का टोन है और अपने आप को बिल्कुल सरेंडर कर देने वाला टोन है जो कि मेनली मीराबाई का राइटिंग स्टाइल था बट आपको ये जान के हैरानी होगी कि इस गाने को लिखा है एक पाकिस्तानी पोएट और लिरिसिस्ट ने जिनका नाम था तुफैल होशियारपुरी और इसको कंपोज किया है नन अदर देन नुसरत फतेह अली खान ने उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि नुसरत जी ने पहली बार इस कव्वाली की पब्लिक लाइव परफॉर्मेंस दी थी ऋषि कपूर और नीतू कपूर के संगीत पे वो पहली बार इंडिया आए थे इस ओकेजन पे राज कपूर जी ने उनको इनवाइट किया था अपने बेटे की शादी में और उन्होंने इस ओकेजन को चूज किया इस कव्वाली को पहली बार परफॉर्म करने के लिए एंड आप इमेजिन कर सकते हैं कि उस टाइम पे ऑडियंस कितनी

0: कवर वर्जन्स तो लाखों आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। नुसरत जी के जो नेफ्यू हैं राहत फतेह अली खान, इन्होंने भी इसका एक कवर वर्जन किया है एज अ ट्रिब्यूट टू हिज अंकल।
1: मी लवा के कवा वर्जन तवारा किना एगो तुम एम में फाहक कोल्लेवे एक कवा की राहत फतेह अली खान के वर्जन।

0: आदित्य दो गेंदर फो दे जहार रिपीट हो ग्रेगंड एगार जहार आदि अंगार दो गेंदम बार जहार
1: वायरल लाइफ हम एक नि मोदी है कि मेगाहर्ट्ज दिवे एफएम
2: अब दफे हिलावत काय को माजी के तिरिया
3: हित कुंजा गहोदी एमे गायावा नानगे हांदा तकाय को
2: हांदा तोगे तेरिया दतुर कोल्लमा

0: best.
1: अस्सलाम वालेकुम नोदी एक एम मेगाहर्ट्स दिवे एफ एम मिगड़ी गठी उनको लांती बे एम आए हूं तेरे नवार उफावे वागुत कोल कंगे दमो मिगड़ी गाड़ में कुरिया गेंद टी टाइम रिक्वेस्ट शो आए की का बदल कोली अलगन शाहुदा महमूद टी टाइम रिक्वेस्ट में शो है कि एहूं तेरी गे रिक्वेस्ट जहा दिन मा अलगन में कुरिया गेंदा शो है कोमे दो के सावे रु हाथर गड़ी फंड एम फस करी तेरी हा कुरिया गेंदा मी शो का बैवे रु मुगे फुर्सत मिहारु फिश के मिवनी हुलवा ले फ मियदु के शो है मेसेज कुरमुंदानी पीएसएम एआईएफ मेदुरको डीएफएम 91 मी पेज तेंग अडो हालम बेनुवा लवेन एकम वाण मला लीला फोन वाल देनी शो का बैवेर वेला वाहक दक्काला लवेन अडो हालम गे इतुरा मी शो गे तेरे मेसेज के जरिए एमएस लवे का रिक्वेस्ट करवेन नुनम हमै के निलावा लवा गे नन जहाला फोन वाल देनस ए लवे जहाल देना हिम अब हम मेसेज कुरमुंदावी मी गडी का फिश मट कामे गेनस ते लवा मी वगुत कोलो मी हास कोलनी हुस कोलनी हम एहुन तेरीना मेसेज कोलुमा वररीत लवे कफो बदलो कोलाना मियदुगे कुरियन हुरी एहुन तेरीना एहुन तेरिंगे रिक्वेस्ट तकायकू

0: मी मरियम रिफ्का रशीद रिफ्का गैड दिवे ही एफएम दिवे ही नाइक दिवे ही नाइक
1: नोदी है 1 मेगाहर्ट्ज दिवे ही एफएम
2: लवे कफ़ा हो लवे

0: नौ दी है के मेगाहर्ट्स दी वे ही एफएम मगरिब नमाद वक्त
1: अल्लाहु अकबर अल्लाह

0: सा से लवता की नुनी में वाहक तके ए वाहकता मिहारु आ अडका आ रूहकाय ए फोरिया ए जोश गेंगुस्तेनी मुलिं एहिं दुनिया का
1: दिवाली ऐसा क्या बैठा तू जाऊन उठना बिठना लाऊन ये की तू तेरे भाई के राड़े नहीं देखा तू इधर कच्चे तू

0: raajo islaamwi duwas e mefurta mefaa hakuri teelsteka heddi hataruna haruge rabiul aakhir mahuge dewana duwahu
1: ei miladi namarsteka fansas hataruna haru
0: raskamuga innavi asultan muhammad farid al awwal
1: e afahu hijurang teelsteka addiha ashe miladi namarsteka fastolas awwana harum fishigen miduwas faahaga kurebun sarukarum huttawale bum afahu alum faahaga kurebun fettevi ओनतिरीस मुहर्रम सादस्तेक एकाविस मीला दिन हातरे में देहास्वी बुरास्वति दुआ होई वजीरुं के मजलेहु के जलसाइं।
0: एई राज्य की सत्तें सत्ता मुस्लिम कौम का वमायको दिवहिंगे दीनी एब्बै वंतकं बदहे कुरुमगे दुआ हेगे गुतुका मिद्वस फाह कुरुम फिन वड़ागें।
2: देर रबीउल आखिर दिवही राज्य इस्लाम विदुस

0: Viral Vibe. Viral Vibe.
1: मेरे सामने वाली खिड़की में की फस्तलों के हर्तों के म्यूजिक एम में फुरी हमें बयां को दे लवे आरटी बर्मन के फुरी हम म्यूजिक का पड़ोसन फिल्म का किशोर कुमार की आफवा मिलावे की मजा थिएट्रिकल गोत का घुसा ले दिन लवे नम विस यूट्यूब फंडा नु करण नवारी मिलावे के मिजाज एक को बदल को ले एना के वर्षन के मडमैतिरे एकोस्टिक बेडरूम पॉप लवे यूके ले ली के रागों तक आए को लव विगें दिए ही ज़माने हिग्गम लोपी के लवे का करण नवानी के में हुशेरों में एक ही प्लेटफॉर्म तक उन 30 अम मिलियन वुरे गिना प्लेस ली बिफावे

0: මිලවන්නනේ ෆිල්ම් එකේ කොන් හිසාව එක.
1: තිලවන්නනේ ඒක මේ හාස්‍යය පෙන්වක් උදින් තකේ.
2: तुझे सब है पता है ना
1: मंगला
2: तुझे सब है पता
0: हां दारे ने तो
1: हां हांगे बहुत
0: टाइम में मिसोपुनी मिसोगे में टचिंग सी लेकी
1: आ बोर्डिंग स्कूल दो
0: बोर्डिंग स्कूल
1: ए ना इनाने कारु तेरेगा ईशान बलहट ए ईशान इनाने
0: बोर्डिंग स्कूल आणि लाफ ए दा तणुं एण हितामवेरे लावे मितो इलावणे गुंदो देम मेती अखिया है ये प्रॉब्लम मिलावणे फिल्म के कोन हिसाब है ओके लवे नेंगे ने मासी ना के लवे के ना बोर्डिंग स्कूल के इंग्लिश पीरियड आणना ने एडजेक्टिव साइ छि के वे दे फाडी एतनु ए छि नेंगुडी मन्ना लवे
1: ए एकला बोदुन तरा तं कोले
0: आ
1: मियार आणे हासी ने नोरी हल्ल मी होदा देने
0: कि हा रंगळ
1: हासलो को हा हासलो को
2: देखो देखो क्या वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या
0: बम बम बोले लवाणनी
2: देखो इन्हें ये हैं ओस की बूंदे पत्तों की गोद में आसमान
0: से थीम थारे जमीन पर अन्नणी
1: याद दे तेरे देते
0: ओहो मतलब हम एक कों अन्नणी
1: थारे जमीन ए कुदी नशा ek hat hai bhi na ko din nasha manzar
0: yes yes barabar
2: darwaze par de karo kinare khute se bandhi hai hawa milke chhudao sare
0: ela
1: vannani
2: aa jao patang
0: art competition kado ಯಾನಿಕೆ ಸ್ಪಾಲಾಲೆ ಬುನಿ ಮರೋ ಫಾವೆ ಚೆಂಗೆ ಮಮ್ಮಿ ಫಿಲ್ಮ್ ಗೆ ತುರ ಲವೆ ಕ್ಯಾಕಿ ಗ ಶೋ ನಿಮ್ಮಲ ಫಾರ್ಮ್ ಮಕ್ಕಿ ವೆಲಾ ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ